फिले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर वासिङ मसिन एसी को कम्प्लिट रेन्ज 10 वर्ष को वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई नागरिकता भए पुग्छ हरेक घरको खुशी घर घरमा एलजी एलजी लाइफ्स गुड

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्नको ठीक 3 बज्यो।

0: आवाज बहन को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz।
1: यो हो हाँ संचार नेटवर्क समय को आवाज